0: Sometimes you make me laugh. Most often you make me cry.
1: From the family making music, mixing Maori with thrash metal, to the man turning prisoners into violin virtuosos in Mexico, we bring you stories of extraordinary people from all over the world, wherever you are.
2: It takes me on a journey across the world, meeting with different people from all walks of life.
3: The BBC World Service, midnight till 8 a.m. every day on NPR.
4: Namaste, welcome to Parichay. परिचय का मुख्य लक्ष्य है कि हम आपकी परिचय अपने उन खास लोगों से कराएं जो फिजी या इंडिया से आकर न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं और बहुत सफलता और कामयाबी हासिल किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ दिलचस्प विषयों पर भी चर्चा करेंगे और शो को लाजवाब गीत संगीत से भी सजाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ निर्मला नंद, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने शो परिचय में। संगीत प्रेमियों, आ जाइए मेरे साथ सुरों का सफर में और संगीत की इस दुनिया में खो जाइए। आज के इस सुहाना सफर में आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक कलाकार से प्यारे प्यारे नगमे, और इसमें आप दो गीत सुनेंगे, मेरी जिंदगी है तू और राता लंबियां। एंड दीज टू सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू फूल राज एंड संग राज ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया।

सुरों का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि अब जाने का समय भी हो गया। चलो अगले सप्ताह फिर मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल कीजिए और खुश रहिए। अंत में ये गीत नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की आवाज में छोड़े जा रही हूँ। गीत के बोल हैं, मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से।